0: शंकरण
1: है हमारी आशा
0: और भजन की
1: तुम्हें
0: पाऊं
1: सेवक सिख हमारे तारी है
0: सत्र हमारे मारी है
1: आप हाथ है मुझे उबरिए
0: मरण काल का त्रास उबरिए
1: पूजो सदा हमारी पछा राख रे मोय रखन हारे
0: शांत सहाय प्यारे
1: दीन बंधु दुष्टन के हंता।

0: जियो हमारा।
1: नमस्कार तसी को हमारी
0: सकल प्रजाजन आप सवारी।
1: सबकन को सिर्फ गुण सुख दियो
2: सतरन को पल मोहब्बत कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत
0: प्रेम की वीर पहचानत।
1: चिट्ठी ते कुंज अरस थुला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी
0: सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पीर पहचान है
0: कट के पट पट की जाने।
1: जब उत्कृष्ट करा कर तारा
0: तर तर तर
1: जब आखिर कर्त हो कब हूँ
0: तो मैं मिल दे तब सब हूँ।

0: कछ पेत न जानत।
1: महादेव को कह सदा शिव
0: कार का चीन नहीं पेवे।
1: आप अपनी बुत है चेती
0: बणद पेन पेन तोय तेती।
1: तुमरा लखन न जाय पसारा
0: सजा प्रथम संसारा।
1: एक रूप अनूप स्वरूपा अंडज जेरज से तज किन्नी
2: खान बहु राज दीनी।
1: कहो फो राजा हो बैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव
2: रूप संपव।
1: अब रचा मेरी तुम करो
2: संगरो
1: दुष्ट जिते उत्वत उत्पाता
2: सकल मलेच करो रण काता।
1: जे अस्तुस्त सरनी परे
2: तन के दुष्ट दखत हुआ मरे।
1: परख जवन भक्त परे तिहारे
2: तन के तुम संकट सब टारे।
1: जोकल को एक बार त्या है
2: आके काल निकना है।
1: रचा होए तहे सब काला
2: दुष्ट अरिष्ट करात काला।
1: कृपा दृष्ट जतन चाहे न हर हो
2: ताके ताप तनक मैं हर हो।
1: रिद सिद्ध कर मौसम होए
2: दुष्ट छा छा सके न कोई।

0: कृपा करी हम पर जग माता
1: ग्रंथ करा पूर्ण सुबिराता
0: गलबे सकल दे को हरता
1: दष्ट दोखेन कोचा करता
0: सिरस तुज पे दे आला
1: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
0: मन पांचत खोल पावे सोई।

0: तपो निकत न तिनर के रह हो जो या की एक बार चौपय को कहे चौपय संवर सत्र सहस पनीज
1: अर्ध सहस तीन कह जय भाद्रव सदी अष्टम रवारा
0: तेज
1: श्री चरित्र उपख्याने त्रय चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मास

0: भगवान उनके द्वारा
1: महेश
0: इंद्र ब्रह्मा जले सदोहरा राम कथा जुग जुग अट।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दुख भंजना कटकटनाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभसात। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना पाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय।

नमः उदारी अनग पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पापर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंध ना पर हर का नाम जपत निसु तर अनग माय रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार्गे जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याइय नानक गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाय संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत भावे विश्राम हाँ मैला मल कबूना तो भय हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध गया संग जे मार के गने जाहे ना कोसा हर का नाम मुहा संग तोसा

प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक बेचारा करे दिन रात, बाहर बेगन तर मल माया, शब सनाहे कश करे शपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान।

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्तकार मिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हिरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा तागो की जाए सदन मसकारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया अगंत शापनी दे राज खात पीत बरते अणु उलास अपनी अमान कछ बाहुर शालिया ज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीदा भी खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्त आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथा उसे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरकी छाया से उरंग लाभ्यो बिन स्यो मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल पटो तय अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे ने तागु हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक बलय लाई मिथ्या तन धन गुणम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती आशु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या पुष्प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर गे चरण मिथ्या सर्वन बर निंदा सुनह मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र

जय प्रसाद शांति शक्ति अमृत खाहे तुस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे तुसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याए सदा मनंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो सरसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तबर लुभावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मना आठ पैर ताका जस गावीजय। जय प्रसाद तुसब गौ माने मुख ताको जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब दर के मान पावे नानक पात सेती कर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिबलावत सराम सनेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस गहत। जय प्रसाद तेरे सगल क्षेत्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सासा सिमरो प्रभु उचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे हे। जय प्रसाद आप भुखन बहरी जय मन ते सिमरत क्यों आल सकी जय। जय प्रसाद असभ हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बेसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोए प्रभु अपने अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई। उठ बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखा। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नेकी जात सो प्रभ सिमर दस सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्रा है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने कर्ण नाद जय प्रसाद वेखे बिस्मा। जय प्रसाद बोले अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सह जय

मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू भावे साज रे मन मेरे तू तासे उराज।

स्वभाव सा संग बसा गोचर लह साधु कै संग आ जारु सह साधक संग बसे थान ऊंचे साधु कै संग महल बहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग भाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब गुल उदार सा संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु कै संग सो धन पावे जिस तंते सबको बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नई कशकाल दर्शन भेड़ तो होत निहाल साधक संग कलुकत हर साधक संग नरक पर हर साधक संग इह सुहेला साध संग बिछरत मेला

ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी पारुकार माह, ब्रह्मज्ञानी का ना ही तंधा, ब्रह्मज्ञान लय तापत मंधा, ब्रह्मज्ञानी का वे स्वपला, ब्रह्मज्ञानी सफल फला।

कई गुण तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गुण नाम रस भी बेमर भय सी जीवे कई गुण नाम गुण गावे आतमरा सुख सह समावे अपने जन को सा सा समारे नान को परमेश्वर के प्यारे सरो करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तस बलिहारण जल थल मई अल सो अष्टपति करण करावन करने जो जो तस भावे सोई हो गन में थाप थाप नहार अंत नहीं कुछ पारा बारा हुक्मे धार अधर रहा हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावे मानुगत पावे प्रभावे त पाथर तरावे प्रभावे न सास ते राखे प्रभावे त हर गुण भाखे प्रभावे त पथ उधारे आप करे अपन।

यो ज्योतिष भावे सोई भंधि यो कबू ऊज नीच मह बसा कबू सौ घर खरंग हसा कबू नेंद चेंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बापाद कबू

संगा दुखी मा अहंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जन्मै मरै संगी दुखना सुखते ठरै संगे दुखी को नाही ठाउ नान सदभावे तलाए मिलाए संगा दुखी आदि बीते टूटै संगा दुखी किते काज ना पहुँचै संगे दुखी को ध्यान भरमाइय संगा दुखी उजड़ पाइय संगा दुखी अंतर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ की शनाहे आपन भी जापे ही खाए संगे दुखी का वरना रखन हार नानक संभावेता लय उबार संगा दुखी एऊं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इंद्र ने त्रापे संगा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुवेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सब मिथ्या कहत किरत नंदा का तुरह भया नानक जो तस्भावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पे जाए संगे दुखी को दरगाह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाइय संगा दुखी ना मरे ना जीवाइय संगे दुखी की पूजे ना आसा संगा दुखी उठ चले नरासा संगे दुख ना दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होय भया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए सबगढ़ तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो साध गिरा सब कुछ भरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर गाँव न कहे बिचार जनो कृपा करे तो सापन नाम दे बड़भागी नानक।

अनुसो जनुसदा अरोग ज्यो मंत्र को थामे थमन त्यों गुरका शब्द मनया समन जो बा खांडा विचार तरह प्राणी गुर चरण लग तनस्तरा ज्वंतकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए बिगा जो माहो ध्यान में मार्ग पावे तिन साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की अरुचा पूर मन मुर काहे बिललाइए प्रभु लिखेगा लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो कुछ करे सोई सुख मान भूला गाहे फिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लपटा रहे और असलोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक बल से तीकर जाहे सुखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तो ला दिखे संते संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुकूज लहर तरगे सोए ए बा बार बिरला बा बारे नानक तागे सत बलहारे चरण साध के धोए धोए पियो अरब साध को अपना जियो साध की धूर कर विशनान साध पर जाइये कुरबान सा सेवा पट भागे पाइये सा संघर कीर्तन गाइये अनक बिगंदे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचा के ओढ़ गही संते दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जी बालन हार भुख को देवत आधार सर्वनिधान जाकी दृष्टि माहे प्रभु लिखे का लेना पाए सबके तिस गाव करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होगा जब जन सदा सदा दिन रहनी सब

रंग सेवको प्रभारणहारा सेवकी राखेन्द्रंकारा सो सेवक जिद्या प्रभतारे नानक सो सेवक सा सा समार अपने जन का प्रदा ढाके अपने सेवक की सर्वर राखे अपने दास को देव बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गतमित कोई ना लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक पूछते उछे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी मैम कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका सासना काट त्याव ताको राख देख रहा हाथ मान जतन करत बहुपात जिसके करता बिरथे जात मारे न राखे वरना कोये सर्व जिया का राखा सोहे काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लख बिढाणी बार बार बार प्रभु जबिय भी अमृत मन तंद्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस

होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के गिर बिख जाहे, आप जपो अबरा नाम जपावो, संत गैत रैत गत पावो, सारभु

उपजी प्रीत प्रेमरा चाओ मंत्र अंतर एहि स्वभाव नेत्र एक दर्श हुए मान भगसे सा चरण तोय भगत जना के मंत्र रंग बिरला गौ पावे संग एक बस दीजे कर भया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मा गई ना जाए नानक रहया सर्व समाए पर बख्शांदीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व

प्रकाश अष्टपदे शांत संग अंतर प्रभिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समेगरी एक सघाट माहे अनुकरंग नाना दृष्टा है।

संग रचन जिन जाता तिसकी ये रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो ए सोई सो माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी उही नानक दर्शन देख सब मोही आप सद किया सब सत तिस प्रभ दे सगरी उत्पत तिस भावित करे विस्तार तिस भावित एक अंकार अनकला लगी न जाय जिस भावित सिलाए मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूरा पे आवा भरपूर अंतर गज साब जनाए नानत जना बुझाए सर्वभूता अवतारा सर्वनयना पेखण हारा सगल समग्री जागा तना आपन जस आप ही सुना।

दीनदयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगड़े गोपाल मांद के माथे नानक उतरे तन के साथ है सरन जोग सुन सरणी आए।

का नास। सुनै सिर बरमा इंद, सुनै मुख साला हनुमंद, सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै सात सिमरत वेद, नानक भगता सदा विंगास। सुनै दुख पाप का नास।

त्यार असंख सति असंख दातार असंख सूर मुह पाख सार असंख मौन लेवला तारू।

तहतरम में नमस्तंग जलासरे नमस्तंग निरासरे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अजबे नमस्तस्त अजबे।

सतगुरु विचार प्रखण कर प्रकटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

0: लख सूरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सूरत लग्यान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करते कारण किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथिया
1: कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक।

0: तू जा पाया वस्त्र न पहरे अनस कहरे मौन विभूता क्यों जाके गुरमिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना हलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध है पत गवा
1: बिड़ला वे किस्ताय न पाई रहे बिवाणी बड़ी मस्तानी अंध न

पौड़ी दान महिंडा तलिका जमेलिता मस्तक लाई है, कूड़ा लालच छड़िए होय इक मन अलख तिहाई है, फल ते वे हो पाइये जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखे था तोड़ तिना दी पाइये, मत थोड़ी सेव कवाई है।

न मारिए, जेहा काले कालना तेवे हो ना उपाचारी है, ऐसी कला न खेडिए जित दरगे गया हारी है, पढ़िया त्यो मिया विचार के विचारी है, मोह चले सुअ के मारी है।

0: पौड़ी जिसे वे सो पाइए सो साहिब सदा समाइए।
1: जित किता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल की चाहिए लमी नद निहालिए। जो साहिब लाला हारिए ते वे आपा सा टालिए।

0: जाने ते हो वर्ते वेखो कौन निर्जा
1: वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब जेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो हो वह नानक सिफत विगास महला दूजा
2: नाने आने दोस्ती

बावड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए होर मत स्नो अगली ओह में जो पह दोना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैर चंद्र पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिस दादे ताखा होना तिस कही है साबास नान खुकम न चले नाल खसम चले।

0: सोई सदा सच साहेब साचा साची नाए
1: हैप्पी होसी जय न जासी रचना जय न रचाए
0: रंगी रंगी पाठी कर कर किंसी माया जिनो पाए
1: कर कर वेखे किता अपना ज्योतिष दी वड्याई
0: ज्योतिष पावे सोए कर सी हुकम न करना जाए
1: सो पातशाह सहा पातशाह बनान कर न जाए
0: हिंदा संतोख सरम पा चोली त्या की कर विपूत
1: किंता काल कुवारी काया युक्त डंडा प्रतीत
0: सागर जमाती मन जीते जग जीत
1: अदेश से आदेश आद नील राज नाथ चुग चुग एको वेश
0: भगत ज्ञान दया भंडार कट कट

चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर

0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्म सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं
2: सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता
0: प्रसावशान्ताय प्रसाव नमो नाथ सदा प्रकाशे
2: अनंत स्वरूपे अपांगं विभूते
0: परमासं परमार्थे सदा सर्वसाथे
2: अनाद स्वरूपे निर्बाद विभूते
0: अत्रपंगी तर्कामे
1: अनंगी नामे त्रपंगी त्रकामे
2: वंगी स्वरूपे सुपंगी अनुपे
0: न पुत्रे न पत्रे न सत्रे न मित्रे न दाते न माते न जाते न पाते न साखं सलीके मितो अमीके
2: सुदेवन प्रभा है जय है जा है
0: भगवती जानत तो है प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
2: हमेशा सलाम है समस्त कलाम है
0: के शायद दबाग है के हुस्न अल चिराग है
2: के कामल करीम है रजाए करीम है
0: के रोजी दहेंद है के राजक रहेंद है
2: करीम कमाल है कि हसन और जमाल है
0: गरीब और खिराज है गरीब और

0: अकंजल नाम समस्त निवासे कर्मण प्रणाशी सतर्मण प्रपुते
1: सदा सच्चिदानंद सतंग प्रणाशी
0: करिमल को निंदा समस्त निवासे।

0: तो प्रसाद सवै एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवै श्रावक सुध समूह सदान के देख फिरयो कर जोद जति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौ न देखियत प्राण पति के
1: भगवान की पाई कृपा होते एक रति बन एक रति के
0: माते मतांग जरे जर संग रूप अतांग सरंग सवारे
1: रंग रंग से कूत पौन के गौन को जात नवारे
0: भारी भजान के भूप बलि विद न्यावत शीश न जात बिचारे गीत फरे सब देश दिशान को बाजद ढोल मृदंग नगारे भूत भविख भवान की भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे तीर्थ नान दया दमदान ससंजम नेम अनेक बसेख है पवन आहार जति जत तार सब सब चार हजार क देख है सौदस पहा दरंत दबास साज सुनादर जान दलेंगे तोर रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान बलेंगे।

0: गाड़े गिड़ान के तोड़न हार सो बाजन ही चकचार लवैया दानव देव फनिंद नसाचर पूत पवे खपवान जपेंगे
1: जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब हाथ पनाएंगे
0: तन प्रतापन बाढ़ जे जात तन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह
1: प्रसाद फिराए जब सत्तर सबे अविलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र निराधप जान त्रिलोक का राज करेंगे
1: कोटि स्नान गजाए गदान अनेक स्वंबर सात बनाएंगे
0: महेश्वर विष्णु सजीवत आनंद फेज मफास परांगे कहाँ पयो जो दो लूचन मूंद कै बैठ रहे हो पक ध्यान लगायो बास कियो बिखिय सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो
1: साच को सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तेरी प्राम पायो
0: काहुले पाहन पूज तरियो सिर काहुले

0: तरसना बहुत ना ही बोलना गुर प्रसाद जिन्हें आप तहर वासना समानी
1: चाल भगता जगो जोग निराली
0: जे तू चलाहे ते चले स्वामी होर कह जाना गुर तेरे
1: जिन्ना मार पाव है
0: कृपा जन नाम लाहे से हर सदा ते आवे
1: विष्णु कथा सुनाया भई से गुरुद्वारे सुख पावे
0: कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे ते वे चलावे
2: ए सोहेला शब्द सुहावा
1: शब्द सुनाया
0: ए तिनका मन वसे जिंत्रो लिखिया आया
1: एक फेरे कनेरे करे गल्ला गल्ली के न पाया
0: कह नानक शब्द सोहेला सतगुर सुनाया
1: पवित होए चेतना जिनी हत्याया
0: पवित होए गुरमुख जिनी ते आया
1: पवित माता का डाक तांब सहज सेओ पवित संगत सबाइया
0: कहंदे पवित सुनते पवित से पवित जिनी मन वसाया
1: कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हत्याया
0: करमी सहज न उपजे

0: गुरु प्रसादी सहज उपजे सहसा लिव जाए।
1: जियो मेरे बारो बारो जियो मेरे तिनि जन्म जुए हारिया।
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मन मनो वसारिया।
1: वेदा मैं अनाम उत्तम सो सने नाही फिरे जो बितालिया।
0: कह नानक जिन सच तजै कूड़े लागे तिनि जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल
0: बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
1: कूड़ की सोए पहुंचे नाही ममसा सच समाणी।
0: जनम रतन जिनी कटिया पले से वंजारे।
1: कहे नानक जिस मन निर्मल सदा रहे जिन नाले।
0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे
1: होवे ता सन्मुख सिख
2: कोई जियो रहे गुरु नाले।
0: गुर के चन हृदय तय अंतर आत्म संभाल ले।
1: आप सहज सदा रहे परना गुर बिना गुर न जाने को।
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
1: जे को गुर ते बेमुख होवे संत
0: मुक्त न हो तय कोई पिछे भविख्या जाए।
1: अनेक जुनी परमावे सतगुरु मुक्त न पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाग चन्नी सतगुरु सब सुनाए।
1: कह नानक विचार देखो सतगुरु मुक्त न पाए।
0: सतगुरु के बिहारियो गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी ता गावो गुरु के रे बाणिया सिर बाणी।
0: जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी।
1: पीवो अमृत सदा रहो पियो सार पाणी।
0: कह नानक सदा गावो यो सच्ची बाणी।
1: सतगुरु न होर कच्ची है
0: बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी।
1: सच्चे कच्चे कच्ची आप वखाणी।
0: हर नित करे रसना कहे कछु न जानी।
1: जिन काहे लिया माया बोलन है रुवाणी।
0: कह नानक सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ।
0: शब्द रतन जत मन लागे एया हुआ समाओ।
1: शब्द सिद्धि।

0: आप जाए।
1: जैसा जियो तैसे मेल रहे हर वसे मनाए।
0: अब बोल के पाक ना के नाम का जिन हर पल ले पाए।
1: हर आस मेरी मन मन जा रहा,
0: मेरी मन मन जा रहा हर लगे आस जानी।
1: हर नेत जपे हो जियो लोहा कठे हो देहारी।
0: इतन पे ना मिलिया जिन हर आवे पाना।
1: कह नानक रास मेरी मन हुआ वन जा रहा।
2: ए रसना तू अन रस राच रही तेरे प्यास न जाए।
1: प्यास न जाए होर किते जिचर हर रस पले न पाए।
2: हर रास पाए
0: पले पिए हर रस बोर न तृष्णा लागे आए।
1: एओ हर रस कर्मी पाए सतगुरु मिले जसाए।
0: हे नानक होर अन रस
1: ए शरीर मेरे तुमने जोत रखी तातु जग में आया।
2: हर जोत रखी तद विच तातु जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग तत खाया।
2: कर प्रसादी बुझिया ता चौत न त्री आया।
1: कह नानक शिष का मूल रचा जोत राखी तातु जग में आया।
2: मन जाओ पया प्राप
0: गाओ सखी गए मंडल बढ़िया।
1: हर गाओ मगल नेत सखे सोग दुख न व्यापे।
2: गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर चापे।
1: अनहत वाणी कर शब्द जानी हर नाम हर

सलामत कहै ना सकै को तू कद कह ब्रह्मा बिसन सिरे तै अगनत तिन को मोह भया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तद का

सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबा गुरप्रसाद जप आद सच जिगार सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबा गुरप्रसाद जप सच जगात सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबा गुरप्रसाद जप आद सच जगात सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी भी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सगल द्वार को छाड़ कै गहो त्योहार ओ द्वार बाहें गह की लाज आस

0: चले
1: जय मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम किन माए उधारी
1: अन पुन्ह चरण करत नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरुमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख मेरे
1: सर्व श्रेष्ठ को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखी।